0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियोम चुन के रे वेर क्वारो बिमार मैं पाचू
0: यू आर लंग यू बी रोटा

0: और मैं पाचू
1: इटी विन्यो और रेडियो इटी विन्यो और रेडियो इटी विन्यो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम चुनकरे वेर क्वारो
0: पियम चुनकरे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: इवान लंग यू बिडो टेला आ इलोका कालू पेने
1: इटी यूनियो और रेडियो.

0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीविनो और रेडियो